റേഡിയോ മൻഭാവൻ 90.8 FM ഓൾവേസ് ഹാർട്ട് ടച്ചിംഗ്. आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट. आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच.

पास। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं हदे छांडी बह दे गया। हद का अर्थ है सीमा, दायरा या वो संकुचित मर्यादा जिसमें हम बंधे हैं, और बेहद का अर्थ है वो अनंत परमात्मा जिसकी कोई सीमा नहीं। कबीर कहते हैं कि जब साधक अपनी छोटी छोटी पहचानों और सीमाओं को छोड़कर उस अनंत में प्रवेश कर जाता है, तब उसका निरंतर वास यानी स्थायी निवास उसी परमात्मा में हो जाता है। वह फिर लौटकर उन छोटी सीमाओं में वापस नहीं आता। अगली पंक्ति बड़ी अद्भुत है, कमल जे फूल फूला बिन। कबीर एक ऐसे कमल की बात कर रहे हैं जो बिना किसी स्थूल फूल के खिल गया है। यह हृदय कमल है जो बिना पानी और मिट्टी के केवल उस प्रभु के प्रेम और ज्ञान के प्रकाश से खिला है। पर कबीर एक दर्द भी जताते हैं, को निरखेगा दास इस अलौकिक दृश्य को, इस आंतरिक खिलावट को भला कौन देख पाएगा। इसे वही देख सकता है जिसने खुद अपनी सीमाओं को तोड़ा हो। साधारण आँखों से ये दिव्य खेल दिखाई नहीं देता। कबीर साहब यहाँ हमें समझा रहे हैं कि असली अध्यात्म संग्रह करना नहीं बल्कि विस्तार करना है। जैसे नदी अगर रुक जाए तो पानी में बांस अर्थात दुर्गंध आने लगती हैं, लेकिन अगर वही नदी प्रवाहित होती रहें तो जीवनदायिनी बन जाती हैं। जब तक आप मैं और मेरा की हद में हैं, तब तक छोटे और बंधे हुए हैं। जिस दिन आप बेहद हुए, आप खुद समंदर हो गए। दोस्तों, आज खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरी सोच, मेरा प्रेम और मेरा व्यक्तित्व कुछ सीमाओं में कैद हैं? क्या मैं जाति, धर्म या अपने अहंकार की दीवारों को पीछे खड़ा हूँ? आज कोशिश कीजिए अपनी सीमाओं से एक कदम बाहर निकलने की। याद रखिए, जब तक आप किनारे को छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक आप अनंत समंदर की गहराई को नहीं जान पाएंगे। उस खिलते हुए भीतर के कमल को महसूस कीजिए जो किसी बाहरी सहारे का मोहताज नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।

ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य व सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ। और मैं जो कुछ भी लेती हूँ वो मेरे ऊपर ऋण है, न जाने इसे मैं कैसे चुका पाऊंगी। ये कहना था मालवा साम्राज्य की रानी और भगवान शंकर की अनन्य भक्त अहिल्याबाई होलकर का। उन्होंने साबित कर दिया था कि शस्त्र के बल पर केवल दुनिया जीती जा सकती है, लोगों के दिलों पर तो प्रेम और करुणा से ही राज किया जा सकता है। उनके जीवन काल में ही प्रजा उन्हें देवी तुल्य मानने लगी थी। ये इतिहास का वो कालखंड है जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का सूर्य ढलने लगा था और मराठाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। उसी समय पेशवा बाजीराव ने अपने कुछ सेनापतियों को छोटे छोटे राज्यों का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा। इसी क्रम में मल्हार राव होलकर को मालवा की जागीर मिली और उन्होंने स्वतंत्र होलकर साम्राज्य की स्थापना कर इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन मल्हार राव की मुश्किल ये थी कि उनका पुत्र खंडेराव न तो योग्य था और न ही राजकाज में उसकी रुचि थी। इसलिए मल्हार राव एक ऐसी पुत्रवधु की तलाश में थे जो उनके राज्य और पुत्र दोनों को ही संभाल सके। और उनकी ये तलाश पूरी हुई महाराष्ट्र के अहमदनगर में जामखेड़ के पास चौंडी गांव में, जहां उन्होंने 7-8 वर्ष की तेजस्वी और संस्कारी अहिल्या को एक मंदिर में आराधना करते हुए अचानक ही देखा। 31 मई 1725 को मानकोजी शिंदे के घर जन्मी अहिल्या को पिता ने घर पर ही पढ़ाया लिखाया था। बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक साधारण घर परिवार में पली बढ़ी अहिल्या अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की सौम्य और सात्विक बालिका थी। उसके सद्गुणों की कांति पहली ही दृष्टि में मल्हार राव को छू गई थी और उन्होंने तुरंत अहिल्या का हाथ अपने पुत्र के लिए मांग लिया। अहिल्या से विवाह के बाद खंडेराव के व्यक्तित्व में भी असाधारण परिवर्तन हुआ। वो एक योग्य सिपाही बनने लगे। राज परिवार अहिल्याबाई की दो संतानों पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई से गुलजार हो उठा। मल्हार राव अत्यंत संतुष्ट होकर मालवा साम्राज्य का सुनहरा भविष्य देख रहे थे। लेकिन नियति एक अलग ही कहानी लिखने चली। अचानक 1754 में खंबेर के युद्ध में खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई का तो जैसे पूरा जीवन ही बिखर गया। उन्होंने सती होने का निश्चय किया। जिम्मेदारियों का वास्ता देकर मल्हार राव ने उन्हें रोका। लेकिन भविष्य के गर्भ में जैसे अहिल्याबाई के लिए दुखों का सैलाब छिपा हुआ था। कुछ ही समय बाद मल्हार राव का निधन हुआ और उसके बाद पुत्र माले राव भी अचानक चल बसा। दामाद यशवंत राव फड़से भी जल्दी ही दिवंगत हुए और पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। अहिल्याबाई के पास जीने की कोई वजह अब नहीं बची थी। किंतु ऐसे दुरूह समय में प्रजा को अपनी संतान मानते हुए इसी दायित्व बोध के साथ उन्होंने होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली।

ये सन 1776 का समय था। महिलाओं की तब की स्थिति से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। ऐसे समय में एक अकेली विधवा स्त्री के हाथ मालवा का साम्राज्य। जाहिर तौर पर शत्रुओं की कुदृष्टि से उसका बचना संभव नहीं था। राज्य के ही एक विश्वासघाती ने दूसरे राज्य के राजा राघोबा को सूचना देकर राज्य पर कब्जा करने का न्योता दिया। खबर लगते ही अहिल्याबाई ने सेनापति तुकोजी राव को साथ लेकर कमान संभाल ली। तुकोजी राव मल्हार राव के दूर के संबंधी थे, जिन पर मल्हार राव का अपार स्नेह और विश्वास था। अहिल्याबाई ने प्रशिक्षित और कुशल महिलाओं की एक सेना गठित कर राघोबा को पत्र भेजा। राजन, तुमने मुझे अबला समझने की भूल की है, इसलिए अब मैं युद्ध भूमि पर तुम्हें बताऊंगी कि अबला क्या होती है। मेरी महिला सेना तुमसे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन याद रखना कि इस युद्ध में अगर हमारी हार होती है तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, पर अगर युद्ध में मेरी महिला सेना से तुम हारे तो ये कलंक तुम्हारे माथे से कभी नहीं हटेगा। इसलिए अच्छा होगा कि अपने निर्णय पर तुम पुनर्विचार कर लो। पत्र पढ़ने के बाद राघोबा बिना युद्ध किए ही लौट गया। इस तरह रानी ने अपनी चतुराई और सूझबूझ का अद्भुत नमूना पेश किया। उन दिनों मालवा राज्य पर डाकुओं और लुटेरों का आतंक भी छाया हुआ था। जंगलों में रहने वाली जनजातियां जो यात्रियों को लूट रही थीं, अहिल्याबाई ने उन्हें ही उन मार्गों का संरक्षक बनाकर इस संकट को भी अत्यंत कुशलता के साथ दूर कर दिया। होलकर साम्राज्य की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अपनी राजधानी विंध्य सतपुड़ा की सुरक्षा कवच के बीच नर्मदा के किनारे स्थित महेश्वर को बनाया। ये वही महेश्वर है जहां जगत गुरु आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। इस पवित्र नगरी में रानी अहिल्याबाई ने मंदिर और सुरम्य घाट बनवाए, जो आज भी अपनी सुंदरता के लिए विख्यात हैं। स्वभावतः अहिल्याबाई अत्यंत दयालु और क्षमाशील थीं, लेकिन नियमों के प्रति अत्यंत सख्त और न्याय में बेहद निष्पक्ष थीं। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य अपने आराध्य भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। राज्य की मुद्रा में रुपयों पर शिवलिंग और बिल्वपत्र का चित्र और सिक्कों पर नंदी का चित्र अंकित था। राजाज्ञाओं पर अपने हस्ताक्षर के स्थान पर वो श्री शंकर लिखती थीं। प्रतिदिन अपनी प्रजा से वो बात करती, उनकी समस्याएं सुनती और न्याय करते समय उनके हाथ में शिवलिंग होता था। यूं कि जैसे अपने आराध्य के आदेश पर अपने आराध्य की ओर से ही वो राजकाज कर रही थीं।

कहा जाता है कि संस्कारों की असल परख समृद्ध शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होने पर ही होती है। मल्हार राव ने नन्ही अहिल्या के जिन संस्कारों को पहली ही दृष्टि में पढ़ लिया था, यही वो संस्कार थे कि रानी अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक और सामाजिक चेतना से भरकर अनगिनत निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने भारत के अलग अलग भागों में अनेक मंदिरों घाटों धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, कुएं बावड़ियां और सड़कें बनवाई, भूखे और प्यासों के लिए अन्न सत्रों और पियाऊ की व्यवस्था करवाई। मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार का काम उन्होंने ज्योतिर्लिंगों से आरंभ किया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, उत्तरकाशी, रामेश्वरम, एलोरा के मंदिर, जगन्नाथपुरी, उज्जैन का महाकाल मंदिर, गया, द्वारिका, अयोध्या और त्र्यंबकेश्वर जैसे 157 स्थानों की सूची अब तक प्राप्त हुई है और अब भी शोध जारी हैं। शासन व्यवस्था पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। उनके राज में महेश्वर साहित्य मूर्तिकला और संगीत कला का गढ़ बन चुका था। उद्योग धंधे फल फूल रहे थे, किसान आत्मनिर्भर थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जिस महेश्वरी साड़ी की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, उस गृह उद्योग को आरंभ करवाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। अहिल्याबाई ने मांडू, सूरत, हैदराबाद और अन्य स्थानों से बुनकरों को बुलवाया, जिन्होंने रानी के अतिथियों को भेंट देने हेतु साड़ी पर महेश्वर के किले, महल और मंदिरों की नक्काशी को हूबहू उतारा। इस तरह ये साड़ी महेश्वर की पहचान बन गई। विशेष बात ये कि उन दिनों पुणे के पेशवा इसी कपड़े की धोती भी महेश्वर से मंगवाते थे। रानी अहिल्याबाई के सुशासन का ही ये सुफल था कि उनके शासनकाल में राजस्व 130% बढ़ चुका था। अपने समय में अहिल्याबाई भारत की अत्यंत समृद्ध महिलाओं में शामिल थीं, लेकिन महेश्वर में वो जहां निवास करती थीं, उसे महल नहीं कहा जा सकता। वो खपरेल और टीन की चादरों से ढका अत्यंत साधारण घर था। उनका व्यक्तित्व सरल और जीवन शैली सादा थी। फ्रांसीसी यात्री कैप्टन मुदाबे ने इसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया है। महेश्वर से आगे की यात्रा के लिए उन्हें रानी से अनुमति हेतु मिलना था। पूछने पर लोगों ने बताया कि वो सुबह नर्मदा घाट पर आती हैं, यहीं उनसे भेंट हो जाएगी। मुदावे आश्चर्य में था कि किसी राज्य की रानी आम जनता से घाट पर भी मिल सकती है, किंतु ऐसा ही हुआ। रानी ने नर्मदा घाट पर ही उनकी बात सुनी और अगले दिन अपने दरबार में बुलाकर आवश्यक दस्तावेज उन्हें सौंप दिए। कैप्टन मुदावे लिखते हैं, वो सांवले रंग की, छोटे कद की, बड़ी आंखों वाली महिला थी, जो बिना आभूषण बहुत साधारण वेश में रहती थीं। जब वो गद्दी पर बैठती थीं, तब पर्दा नहीं करती थीं। कोई भी उनसे बेहद आसानी से मिल सकता था। अपनी प्रजा के लिए ऐसी सुलभ थीं रानी अहिल्याबाई। जनता उन्हें माँ साहिब कहकर सम्मान देती थी और उन्होंने भी ममता से भरकर आजीवन जन जन की सेवा की और 13 अगस्त सन 1795 को महेश्वर में ही अंतिम सांस ली। सच तो ये है कि विश्व इतिहास के पन्नों में रानी अहिल्याबाई होलकर की जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, शायद नहीं हुई। लेकिन देश भर में उनके द्वारा निर्मित स्थलों और मंदिरों में उनके अमिट हस्ताक्षर आज भी मौजूद हैं। और महेश्वर के घाटों, मंदिरों, गलियों

0: अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।
1: ये वतन
2: श्रोतो, आताच आपण वतन का राग हा कार्यक्रम ऐकलात। स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाळ यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला।

0: का हिस्सा ये दिल में अरमा क्या जागे लगा दिया तूने प्रेम रोग।
1: अरे जा पगला कहीं का।
0: हाय।

मैं दिल रुबा हूँ, सारे शहर में सबके दिलों पे लिखा है मेरा नाम और पता।

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, हदे छानी बहदे गया। हद का अर्थ है सीमा, दायरा या वो संकुचित मर्यादा जिसमें हम बंधे हैं, और बेहद का अर्थ है वो अनंत परमात्मा जिसकी कोई सीमा नहीं। कबीर कहते हैं कि जब साधक अपनी छोटी छोटी पहचानों और सीमाओं को छोड़कर उस अनंत में प्रवेश कर जाता है, तब उसका निरंतर वास यानी स्थायी निवास उसी परमात्मा में हो जाता है। वह फिर लौटकर उन छोटी सीमाओं में वापस नहीं आता। अगली पंक्ति बड़ी अद्भुत है, कमल जे फूल फुल्या बिन। कबीर एक ऐसे कमल की बात कर रहे हैं जो बिना किसी स्थूल फूल के खिल गया है। यह हृदय कमल है जो बिना पानी और मिट्टी के केवल उस प्रभु के प्रेम और ज्ञान के प्रकाश से खिला है। पर कबीर एक दर्द भी जताते हैं, को निरखेगा दास, इस अलौकिक दृश्य को, इस आंतरिक खिलावट को भला कौन देख पाएगा। इसे वही देख सकता है जिसने खुद अपनी सीमाओं को तोड़ा हो। साधारण आँखों से ये दिव्य खेल दिखाई नहीं देता। कबीर साहब यहाँ हमें समझा रहे हैं कि असली अध्यात्म संग्रह करना नहीं बल्कि विस्तार करना है। जैसे नदी अगर रुक जाए तो पानी में बांस अर्थात दुर्गंध आने लगती हैं, लेकिन अगर वही नदी प्रवाहित होती रहें तो जीवनदायिनी बन जाती हैं। जब तक आप मैं और मेरा की हद में हैं, तब तक छोटे और बंधे हुए हैं। जिस दिन आप बेहद हुए, आप खुद समंदर हो गए। दोस्तों, आज खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरी सोच, मेरा प्रेम और मेरा व्यक्तित्व कुछ सीमाओं में कैद हैं? क्या मैं जाति, धर्म या अपने अहंकार की दीवारों को पीछे खड़ा हूँ? आज कोशिश कीजिए अपनी सीमाओं से एक कदम बाहर निकलने की। याद रखिए, जब तक आप किनारे को छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक आप अनंत समंदर की गहराई को नहीं जान पाएंगे। उस खिलते हुए भीतर के कमल को महसूस कीजिए जो किसी बाहरी सहारे का मोहताज नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो, तुमच्या प्रत्येक मूड साठी परफेक्ट म्युझिक सोबत ऐका धमाल गप्पा आणि भन्नाट किस्से, एक खास शो मूड्स अँड म्युझिक आरजे शुभांगी सोबत दर बुधवारी सकाळी 10:30 आणि पुनःप्रसारण सायंकाळी 6:30। सो डोंट फॉरगेट टू लिसन मूड्स अँड म्युझिक विथ आरजे शुभांगी ओनली ऑन रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य व सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ। और मैं जो कुछ भी लेती हूँ वो मेरे ऊपर ऋण है, न जाने इसे मैं कैसे चुका पाऊंगी। ये कहना था मालवा साम्राज्य की रानी और भगवान शंकर की अनन्य भक्त अहिल्याबाई होलकर का। उन्होंने साबित कर दिया था कि शस्त्र के बल पर केवल दुनिया जीती जा सकती है, लोगों के दिलों पर तो प्रेम और करुणा से ही राज किया जा सकता है। उनके जीवन काल में ही प्रजा उन्हें देवी तुल्य मानने लगी थी। ये इतिहास का वो कालखंड है जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का सूर्य ढलने लगा था और मराठाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। उसी समय पेशवा बाजीराव ने अपने कुछ सेनापतियों को छोटे छोटे राज्यों का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा। इसी क्रम में मल्हार राव होलकर को मालवा की जागीर मिली और उन्होंने स्वतंत्र होलकर साम्राज्य की स्थापना कर इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन मल्हार राव की मुश्किल ये थी कि उनका पुत्र खंडेराव न तो योग्य था और न ही राजकाज में उसकी रुचि थी। इसलिए मल्हार राव एक ऐसी पुत्रवधु की तलाश में थे जो उनके राज्य और पुत्र दोनों को ही संभाल सके। और उनकी ये तलाश पूरी हुई महाराष्ट्र के अहमदनगर में जामखेड़ के पास चौंडी गांव में, जहां उन्होंने 7-8 वर्ष की तेजस्वी और संस्कारी अहिल्या को एक मंदिर में आराधना करते हुए अचानक ही देखा। 31 मई 1725 को मानकोजी शिंदे के घर जन्मी अहिल्या को पिता ने घर पर ही पढ़ाया लिखाया था, बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक साधारण घर परिवार में पली बढ़ी अहिल्या अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की सौम्य और सात्विक बालिका थी। उसके सद्गुणों की कांति पहली ही दृष्टि में मल्हार राव को छू गई थी और उन्होंने तुरंत अहिल्या का हाथ अपने पुत्र के लिए मांग लिया। अहिल्या से विवाह के बाद खंडे राव के व्यक्तित्व में भी असाधारण परिवर्तन हुआ। वो एक योग्य सिपाही बनने लगे। राज परिवार अहिल्याबाई की दो संतानों पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई से गुलजार हो उठा। मल्हार राव अत्यंत संतुष्ट होकर मालवा साम्राज्य का सुनहरा भविष्य देख रहे थे। लेकिन नियति एक अलग ही कहानी लिखने चली। अचानक 1754 में खंबेर के युद्ध में खंडेराव वीर गति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई का तो जैसे पूरा जीवन ही बिखर गया। उन्होंने सती होने का निश्चय किया। जिम्मेदारियों का वास्ता देकर मल्हार राव ने उन्हें रोका, लेकिन भविष्य के गर्भ में जैसे अहिल्याबाई के लिए दुखों का सैलाब छिपा हुआ था। कुछ ही समय बाद मल्हार राव का निधन हुआ और उसके बाद पुत्र माले राव भी अचानक चल बसा। दामाद यशवंत राव फड़से भी जल्दी ही दिवंगत हुए और पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। अहिल्याबाई के पास जीने की कोई वजह अब नहीं बची थी, किंतु ऐसे दुरूह समय में प्रजा को अपनी संतान मानते हुए इसी दायित्व बोध के साथ उन्होंने होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली।

ये सन 1776 का समय था। महिलाओं की तब की स्थिति से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। ऐसे समय में एक अकेली विधवा स्त्री के हाथ मालवा का साम्राज्य। जाहिर तौर पर शत्रुओं की कुदृष्टि से उसका बचना संभव नहीं था। राज्य के ही एक विश्वासघाती ने दूसरे राज्य के राजा राघोबा को सूचना देकर राज्य पर कब्जा करने का न्योता दिया। खबर लगते ही अहिल्याबाई ने सेनापति तुकोजी राव को साथ लेकर कमान संभाल ली। तुकोजी राव मल्हार राव के दूर के संबंधी थे, जिन पर मल्हार राव का अपार स्नेह और विश्वास था। अहिल्याबाई ने प्रशिक्षित और कुशल महिलाओं की एक सेना गठित कर राघोबा को पत्र भेजा। राजन, तुमने मुझे अबला समझने की भूल की है, इसलिए अब मैं युद्ध भूमि पर तुम्हें बताऊंगी कि अबला क्या होती है। मेरी महिला सेना तुमसे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन याद रखना कि इस युद्ध में अगर हमारी हार होती है तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, पर अगर युद्ध में मेरी महिला सेना से तुम हारे तो ये कलंक तुम्हारे माथे से कभी नहीं हटेगा। इसलिए अच्छा होगा कि अपने निर्णय पर तुम पुनर्विचार कर लो। पत्र पढ़ने के बाद राघोबा बिना युद्ध किए ही लौट गया। इस तरह रानी ने अपनी चतुराई और सूझबूझ का अद्भुत नमूना पेश किया। उन दिनों मालवा राज्य पर डाकुओं और लुटेरों का आतंक भी छाया हुआ था। जंगलों में रहने वाली जनजातियां जो यात्रियों को लूट रही थीं, अहिल्याबाई ने उन्हें ही उन मार्गों का संरक्षक बनाकर इस संकट को भी अत्यंत कुशलता के साथ दूर कर दिया। होलकर साम्राज्य की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अपनी राजधानी विंध्य सतपुड़ा के सुरक्षा कवच के बीच नर्मदा के किनारे स्थित महेश्वर को बनाया। ये वही महेश्वर है जहां जगत गुरु आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। इस पवित्र नगरी में रानी अहिल्याबाई ने मंदिर और सुरम्य घाट बनवाए, जो आज भी अपनी सुंदरता के लिए विख्यात हैं। स्वभावतः अहिल्याबाई अत्यंत दयालु और क्षमाशील थीं, लेकिन नियमों के प्रति अत्यंत सख्त और न्याय में बेहद निष्पक्ष थीं। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य अपने आराध्य भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। राज्य की मुद्रा में रुपयों पर शिवलिंग और बिल्वपत्र का चित्र और सिक्कों पर नंदी का चित्र अंकित था। राजाज्ञाओं पर अपने हस्ताक्षर के स्थान पर वो श्री शंकर लिखती थीं। प्रतिदिन अपनी प्रजा से वो बात करती, उनकी समस्याएं सुनती और न्याय करते समय उनके हाथ में शिवलिंग होता था। यूं कि जैसे अपने आराध्य के आदेश पर अपने आराध्य की ओर से ही वो राजकाज कर रही थीं।

कहा जाता है कि संस्कारों की असल परख समृद्ध, शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होने पर ही होती है। मल्हार राव ने नन्ही अहिल्या के जिन संस्कारों को पहली ही दृष्टि में पढ़ लिया था, यही वो संस्कार थे कि रानी अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक और सामाजिक चेतना से भरकर अनगिनत निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने भारत के अलग अलग भागों में अनेक मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, कुएं, बावड़ियां और सड़कें बनवाई, भूखे और प्यासों के लिए अन्न सत्रों और पियाऊ की व्यवस्था करवाई। मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार का काम उन्होंने ज्योतिर्लिंगों से आरंभ किया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, उत्तरकाशी, रामेश्वरम, एलोरा के मंदिर, जगन्नाथपुरी, उज्जैन का महाकाल मंदिर, गया, द्वारिका, अयोध्या और त्र्यंबकेश्वर जैसे 157 स्थानों की सूची अब तक प्राप्त हुई है और अब भी शोध जारी हैं। शासन व्यवस्था पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। उनके राज में महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला और संगीत कला का गढ़ बन चुका था। उद्योग धंधे फल फूल रहे थे, किसान आत्मनिर्भर थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जिस महेश्वरी साड़ी की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, उस गृह उद्योग को आरंभ करवाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। अहिल्याबाई ने मांडू, सूरत, हैदराबाद और अन्य स्थानों से बुनकरों को बुलवाया, जिन्होंने रानी के अतिथियों को भेंट देने हेतु साड़ी पर महेश्वर के किले, महल और मंदिरों की नक्काशी को हूबहू उतारा। इस तरह ये साड़ी महेश्वर की पहचान बन गई। विशेष बात ये कि उन दिनों पुणे के पेशवा इसी कपड़े की धोती भी महेश्वर से मंगवाते थे। रानी अहिल्याबाई के सुशासन का ही ये सुफल था कि उनके शासनकाल में राजस्व 130% बढ़ चुका था। अपने समय में अहिल्याबाई भारत की अत्यंत समृद्ध महिलाओं में शामिल थीं, लेकिन महेश्वर में वो जहां निवास करती थीं, उसे महल नहीं कहा जा सकता। वो खपरेल और टीन की चादरों से ढका अत्यंत साधारण घर था। उनका व्यक्तित्व सरल और जीवन शैली सादा थी। फ्रांसीसी यात्री कैप्टन मुदाबी ने इसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया है। महेश्वर से आगे की यात्रा के लिए उन्हें रानी से अनुमति हेतु मिलना था। पूछने पर लोगों ने बताया कि वो सुबह नर्मदा घाट पर आती हैं, यहीं उनसे भेंट हो जाएगी। मुदाबी आश्चर्य में था कि किसी राज्य की रानी आम जनता से घाट पर भी मिल सकती है, किंतु ऐसा ही हुआ। रानी ने नर्मदा घाट पर ही उनकी बात सुनी और अगले दिन अपने दरबार में बुलाकर आवश्यक दस्तावेज उन्हें सौंप दिए। कैप्टन मुदाबी लिखते हैं, वो सांवले रंग की, छोटे कद की, बड़ी आंखों वाली महिला थीं, जो बिना आभूषण बहुत साधारण वेश में रहती थीं। जब वो गद्दी पर बैठती थीं, तब पर्दा नहीं करती थीं। कोई भी उनसे बेहद आसानी से मिल सकता था। अपनी प्रजा के लिए ऐसी सुलभ थीं रानी अहिल्याबाई। जनता उन्हें माँ साहिब कहकर सम्मान देती थी और उन्होंने भी ममता से भरकर आजीवन जन जन की सेवा की और 13 अगस्त सन 1795 को महेश्वर में ही अंतिम सांस ली। सच तो ये है कि विश्व इतिहास के पन्नों में रानी अहिल्याबाई होलकर की जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, शायद नहीं हुई। लेकिन देश भर में उनके द्वारा निर्मित स्थलों और मंदिरों में उनके अमिट हस्ताक्षर आज भी मौजूद हैं। और महेश्वर के घाटों, मंदिरों, गलियों, बाजारों में, महेश्वर की हवाओं में उनकी समर्पित सेवा की महक घुली हुई है, जो सांसों में भरती रहती है। उनकी भक्ति, गौरव और वैभव का साक्षी नर्मदा का पवित्र जल जैसे उनकी स्मृतियों को अपनी कलकल में आज भी गुनगुना रहा है। उनके स्मृति आचमन के लिए आइए चलें पवित्र नर्मदा तट पर।

0: अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।
1: ये
2: श्रोते हो, आताच आपण वतन का राग हा कार्यक्रम ऐकलात। स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाळ यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला।

0: ये क्या बदतमीजी है?
1: बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। क्या एक शरीफ लड़की से इस तरह बात की जाती है?
0: कह दो ये सब झूठ है।
1: क्या झूठ है?
0: यही कि तुमने मुझसे बेवफाई की है।
1: हमसे वफा की उम्मीद? हम नहीं जानते वफा क्या है।
0: लैला,
1: मेरा नाम लीला है।
2: Any problems, darling?
1: No problem, darling.
2: No problems?
1: No.
2: Then come on, let's go and dance.
1: Let's dance.

बिस्मिल्ला अल्लाह सुनते हुई याद अल्लाह दिल ये बोला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला मुर्गी वालो मुर्गी वालो अपनी मुर्गियां संभालो मुर्गा मेरा जवान हो गया खाके बादाम और पिस्ता पट्ठा पहलवान हो गया रे बाबा पट्ठा पहलवान हो गया हाँ हुई याद अल्लाह दिल ये बोला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला अल्लाह

हर एक मुर्गी का चाहने वाला, गोरी है मुर्गी मुर्गा है काला, हर एक मुर्गी का चाहने वाला, करदा है पापी गड़बड़ घोटाला, करदा है पापी गड़बड़ घोटाला, देसी को ताके अंग्रेजी को ढाके, मुर्गा बड़ा शैतान हो गया, मुर्गी वालो मुर्गी वालो अपनी मुर्गियां संभालो, मुर्गा मेरा जवान हो गया, आके बादाम और पिस्ता पट्टा पहलवान हो गया, अरे पट्टा पहलवान हो गया, अरे बाबा पट्टा पहलवान हो गया।

चलती है दिल की बंदूक इसकी, हर रंग की मुर्गी माशूक इसकी, चलती है दिल की बंदूक इसकी, खाली नहीं दिल की संदूक इसकी, खाली नहीं दिल की संदूक इसकी, गुण इसमें क्या है मुर्गियां ही जाने, मुर्गा मेरा खुले बान हो गया, मुर्गी वालों मुर्गी वालों अपनी मुर्गियां संभालो, मुर्गा मेरा जवान हो गया, खाके बादाम और पिस्ता पट्ठा पहलवान हो गया, अरे पट्ठा

0: रहती है मुर्गियों पे उसकी निगाहें, बेचैन वो भी है बेचैन ये भी है, बेचैन वो भी है बेचैन ये भी है।
1: और क्या कहता है।

0: अपनी नजर की कसम।
1: मैं खो गया, दिल खो गया, क्या हो गया,
0: एक जो तुझको सनम।
1: सुन ओ कली कश्मीर की मेरी कसम, मुस्कुरा।

क्या कहूँ जाने मन, कातिल अदा कातिल नजर कातिल हसी, तौबा तेरा बाकपन, गुस्सा न कर जाने जिगर, मुझसे निकाहे तो मिला तारो।

0: कहा था लोगों को घूस दो ताकि वो तुम्हें संदीप कहे? मैंने कहा था जाली चेक लिखो।
1: अरे बाबा अभिनय जम करो,
0: बाहर में जाए तुम्हारा अभिनय। मैंने तो मजबूरन झूठ का सहारा लिया, लेकिन तुम क्यों मैं झूठा बना रहे हो?

के सुंदर फूल खिले हैं, मुखरित हो गए सरगम के स्वर, मन बीना के मधुर तार बजे हैं।

कभी कभी डरे ये मन कि तुम कहीं ना हो, नैनों का एक सपना तुम ही कहो न चुप रहो, कि तुम सच हो या कल्पना की कोई छलना।

झलक पुलक पुलक गया मन मेरा झूम के, आए मुझे तुम ही नजर इधर उधर, जिधर भी देखूं

देखो हाँ नहीं नहीं मायके मत मायके मत तुम मायके मत जाइयो हाँ हाँ छोड़ दिया ए टोनी फर्नांडिस बेबी थैंक यू थैंक यू।

0: चिंता नहीं बालिका। अच्छा कहानी कहां तक पहुंची?
1: सोम गिर पड़ा।
0: सोमू नहीं, कीदड़।

0: कुत्ते जब भौंके भाग गए, गीदड़ जी हांडी से निकले।
1: हाँ।
0: और धूप चढ़े जंगल पहुंचे, ऊपर से नीचे तक नीले।
1: अच्छा।
0: हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है?
1: मुझे पता है।
0: क्या पता है?
1: गीदड़।
0: चुप बुद्धू। कहाँ से आ गए? हाँ, सब जानवर देख के डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है, दिखने में नीला दिखता है, अंदर से लाल बुझक्कड़ है। गीदड़ ने भी चालाकी की।
1: क्या किया?
0: मोटी आवाज में गुर्राया,
2: मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ अब जंगल का, मुझको भगवान ने भिजवाया।
0: संभाल के। शेर की धुम भी हिलने लगी और मुंह से बस निकला हेलो। बंदर का मुंह लाल होता है ना, डर के मारे निकला येलो।

0: बताया तुझे?
1: बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ उस जंगल में। डरती क्यों हो?
2: तुम शोर क्यों कर रहे हो?
1: मैं शोर नहीं करूंगा, मैं तो बिजली हूँ। बिजली?
2: बिजली? तुम तो गीदर थे ना?
1: गीदर? अच्छा, मैं तो सब कुछ हूँ।
2: अच्छा,
1: नहीं, मत फोन करो। और बस

जान के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे आ

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

0: वाह देरना देरना देरना रे देरना ब्यूटीफुल देरना देरना देरना देरना ना
1: गुड
0: थैंक यू। क्या क्या क्या क्या क्या व्हाट हैपेंड?

बैंड वाले भाई साहब, एक मिनट। क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं। आप थोड़ा बाजा बजाएंगे हैं, पैसे बाद में। 1, 2, 3, 4।